फ्रेस आदि खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंसा

0: सुनो अली हम लोग ग्यारह बजे के
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

आज कार्यक्रम को क्रम में राखी छोटो अंतिम व्यापारिक विश्राम समय हाँ स्वागत करते कार्यक्रम का मुसिका भाग में आज हमी तपक्ष मंगलवार व्यवसाय में रहे तपक्ष सुमधुर खाल नया नया लोकगीत भाका कार्यक्रम में स्थान दिद तपहसंगे सहयात्रा करते अब भी हमी कार्यक्रम छुट्टी जान पर्ने समय में आईपुगा तपक्ष रहेर यिनी अनि यस्तै सुमधुर खालका भाकाहरूसँगै सहयात्रा गर्ने मन हुँदा हुँदै पनि छुट्टिएर जान पर्ने हुँदा आगामी श्रृंखला